Yo, hello, hello, hello. You are back and you are listening to Pakenia Express and I am Nimra Alam. And today we are going to present an upbeat song because if somebody is under the weather and not feeling so good, you are up for a treat because your sis is also not feeling that good. And let's uplift our mood with all those cool and chatpate songs and just try to lift each other's mood up together because aap is journey mein akele nahi hain. Aapke saath hum bhi hum saath saath hain kyunki I think mujhe hamesha aisa lagta hai that jab aap kisi aur mulk mein aate ho apna ghar bar apni identity apna sab kuch chhod kar to aapko kabhi bhi koi bhi apne jaisa desi dekhkar isliye itni khushi milti hai because aapko lagta hai ki aap akele nahi ho. मतलब आपके साथ भी कोई है और वो भी उसी सेम जर्नी से गुज़रा है और आप दोनों एक ही तरह की चीज़ें जो हैं वो गो थ्रू कर रहे हो और हो सकता है कि आपकी मुश्किल आसान आपकी जो चीज़ें हैं वो उतनी मुश्किल ना हो और किसी और की चीज़ें जो हैं वो बहुत आसान हो या किसी और को फ़ायदा हो क्योंकि वो किसी और को जानता है यहाँ पर और कि दूसरों को फ़ायदा क्योंकि आपको फ़ायदा नहीं है और इस तरह की सारी चीज़ें लेकिन उसके बावजूद बहुत ज़रूरी आप जब भी किसी देसी को देखते हो तो आपको एक सेंस ऑफ आइडेंटिटी होती है लाइक एक वो चीज़ होती है दैट चलो शायद मुश्किलात सेम नहीं होंगी लेकिन कम से कम ज़ुबान तो सेम है यू नो तो वो जो एक एहसास होता है ना कि आप इस पूरी जर्नी में अकेले नहीं हैं वही आपकी बहुत धारस बंधा देता है और कभी कभी आप उन लोगों के साथ इतने क्लोज भी नहीं होते लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि यार मुझे अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं उस बंदे के पास जा सकता हूँ. इस तरह के दोस्त इस तरह के एक्विंटेंसेस जिनके साथ आप कभी भी किसी भी तरह जाकर जब भी मर्जी बात कर सकते हैं वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है. मुझे लगता है कि अगर आप किसी ऐसे बंदे को अपने इर्द गिर्द जानते हैं जो आपके लिए मौजूद होता है जब आप बहुत डाउन फील कर रहे होते हैं तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. तो फिर आप उस चीज़ के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए आपको. और अच्छा तो हम लोग शो कर रहे हैं एक्चुअली बहुत दिनों बाद मेरे ख्याल से लास्ट टाइम जब मैंने शो किया था तो बहुत ही हैप्हैज़र्ड था सब कुछ और अभी भी उसी तरह है बिकॉज अब एक्चुअली वो टाइम शुरू हो गया है जब क्रिसमस बहुत करीब आने वाली है तो सब कुछ लाइक ठा पटी हो रहा है और एकदम से नया सेशन सितंबर में शुरू हो जाता है तो अक्टूबर नवंबर में आपके पास बहुत ज़्यादा काम होता है करने को और आप लोगों को भी आई नो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगी घर में और इधर उधर काम पे तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि अपना दिमाग जो है उसको शट डाउन करें. और आज हम सुरिंदर कौर के गाने चला रहे हैं. ये पुराने गाने हैं थोड़ा सा फ्यूजन है और मिक्स करके आई रियली लव हर सॉन्ग्स. आई जस्ट डिस्कवर्ड हर रिसेंटली क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे इधर उधर कोई रील सुन रही थी तो आई लाइक द वॉइस एंड आई वाज लाइक के देखना चाहिए इसी लिए मैं एक और गाना चलाने लगी हूँ सुरेंद्र कौर का. आप लोग भी सुनिए इंजॉय कीजिए क्योंकि आज हम एक दूसरे का मूड ज़रा लिफ्ट करना चाह रहे हैं बिकॉज चाहे रातें ग्लूमी हैं और शाम बहुत डार्क है और शाम बहुत जल्दी भी हो रही है लेकिन दिल का हाल जो है वो हम अपलिफ्ट कर सकते हैं ऐसे चटपटे गानों के साथ. सो हियर वी गो विद अनदर सॉन्ग ऑफ सुरेंद्र कौर अख कासनी कासनी. एवरीबडी नोज दिस सॉन्ग. कम ऑन हियर वी गो.

सो आप लोग आ गए हैं वापस और हम लोग सुन रहे थे आँख काशनी. वी ऑल हैव काशनी आँखें एंड ऑल दोज अखियाँ जिनकी काशनी है उन लोगों को ये सॉन्ग डेडिकेटेड था भाई, क्योंकि वाई नॉट. जब आप यहाँ समुंदर ऑफ पीपल में रहते हैं जिन सबकी आँखें जो हैं वो तरह तरह के रंगों की हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा जब काशनी आँख के बारे में हम बात करते हैं तो क्या मज़े ताज़े हो जाते हैं ना आँखों के रंगों के हमारे. मतलब मज़े की बात यह है कि जिन लोगों की कलर्ड आइज़ हैं उनको कभी एहसास ही नहीं होता कि डार्क कलर आइज़ जो हैं वो कितनी डिफरेंट होती हैं. मतलब मैं जब यहाँ पर आई थी तो लोगों को लगता था मेरे बाल काले हैं, मेरी आँखें काली हैं, बट मेरी आँखें और मेरे बाल काले नहीं हैं, ये ब्राउन होता है, हमारे में ये ब्राउन है. हमारे वहाँ पर कितने सारे शेड्स ऑफ ब्लैक्स हैं और कितने सारे शेड्स ऑफ ब्राउन्स हैं और काशनी आँखें हैं और डोरी आँखें हैं और किसी की कैसी है और किसी की कैसी है. तो कभी कभी आई फील सैड कि दुनिया को पता ही नहीं है कि ब्राउन आँखों में और काले बालों में कितने रंग होते हैं. आज की गहरी बात. सब जी हाँ, तो कुछ दिन पहले हुआ कुछ यूँ कि मैं हम लोग छुट्टी पर गए हुए थे. सितंबर में जब छुट्टियाँ ख़त्म हो रही होती हैं तो एकदम से हमें ख्याल आता है कि यार बस पाकिस्तान जाना इनफ नहीं था, कि एक फैमिली का ट्रिप ही होना चाहिए साथ में, है ना. तो हम लोग जा रहे थे और जब हम वापस आए तो हमेशा की तरह हमारी फ़्लाइट जो है वो लेट हो गई थी. हम जब वापस आए तो हम लोगों को वियना से बाय रोड आना था साल्सबर्ग की तरफ. तो जब हम लोग वापस आ रहे थे तो क्योंकि हमारी फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी तो कोई रात के 3-4 बज रहे थे जब मैं ड्राइव कर रही थी. और उस टाइम पर ऑब्वियसली आपको मेरे हस्बैंड की पकॉल 3 बजे एक झोंका आता है नींद का, जो कि बहुत डेडली होता है. और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिकॉज जब आप ड्राइव कर रहे होते हैं इस तरह के नींद के झोंके जो है वो बहुत ख़तरनाक होते हैं, स्पेशली जब यू आर ड्राइविंग विद योर फैमिली और आपके बच्चे और साथ में हैं तो आपकी कुल कायनात आपके साथ चल रही है. तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एकदम से बंदे को वो होता है प्रेशर ना. तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए ना, तो बिकॉज़ मैं सुन रही थी पॉडकास्ट, बिकॉज़ नॉर्मली जब भी मैं ड्राइव कर रही होती हूँ तो मैं कोई ना कोई पॉडकास्ट सुनती हूँ बिकॉज़ मुझे अपना जो राइड का जो टाइम है उसको प्रोडक्टिव बनाना है. एंड आई एम नॉट अ पर्सन हु नॉर्मली लिसन्स टू म्यूज़िक वगैरह इस तरह से ना. तो मतलब चलते फिरते घर में इधर उधर मेरे गाने नहीं चलते हैं, मुझे नहीं पसंद है क्योंकि गानों के लिए मेरे पास टाइम है मेरा रेडियो का ना. तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब क्या गाड़ी में आते हुए भी गाने सुनने हैं. तो अब पॉडकास्ट सुनते सुनते मुझे नींद आ रही थी बिकॉज पॉडकास्ट में टॉपिक जो है वो बहुत सीरियस चल रहा था. इट वाज अबाउट कयामत एंड अल्लाह मियाँ का अर्श और किस तरह से फरिश्ते एंड कयामत के दिन किस तरह से सब होगा और ये पूरा प्रोसेस चल रहा था. बाय द वे अगर आप लोगों को भी इस तरह के कोई पॉडकास्ट में इंटरेस्टेड है तो फुरकान कुरैशी व्लॉग्स में व्लॉग्स मैं सुनती हूँ और आप लोग भी सुन सकते हैं. इट्स लाइक डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में है और तजस्सुस जो है इट्स लाइक पार्ट ऑफ आर ईमान और हम लोगों का वो एक मुसलमान होने के नाते जो है हम लोगों को पार्ट ऑफ आर ईमान तो नहीं कहना चाहिए बट एक मुसलमान होने के नाते आपको एक वो हमेशा जस्तजू करते रहना चाहिए. और इस मतलब हजूर सल्लम भी सुबह को उठते थे और आसमान की तरफ देखा करते थे. तो मतलब वो जो एक ऑब्जर्वेशन है और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को उसका कहा गया है. तो जब इस तरह की सारी चीज़ें हैं तो कोशिश करें कि आप लोग भी तजस्सुस जो है वो अपने अंदर जो है वो मरने ना दें. और जब बंदा ऑब्ज़र्व करता है चीज़ें और जब बंदा एक किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस होता है तो तभी नई चीज़ें डिस्कवर होती हैं और नए रास्ते निकलते हैं और आसमां से आगे जहाँ और भी हैं. तो आसमां से नहीं, ये क्या है, ये मैंने गलत बोला है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, कहाँ से आगे जहाँ और भी है. क्या मैं कभी कभी बोलती हूँ, आई स्वेयर. अच्छा, तो कमिंग बैक टू द टॉपिक जो कि मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ. या तो जब मैं रास्ते में आ रही थी तो फिर मैंने एकदम तड़कते पड़कते गाने लगाना शुरू किए. जो जब आप लोग अभी ये एक गाना सुनिए और जब आप लोग वापस आएंगे तो मैं अपने वो तड़कती भड़कती हुई प्ले लिस्ट चलाने वाली हूँ जो मैंने रास्ते में आते हुए गाने सुने थे, बिकॉज मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जिससे मैं एकदम उठ जाऊँ. ठीक है, तो अभी ये वाला जो है लास्ट सॉन्ग is going to be that क्या नाम था, क्या था गाने का नाम, आप सुनिए और ख़ुद डिस्कवर कीजिए कि गाने का नाम क्या था. ओह, काले रंग दा परांदा. इट इज़ सच अ गुड सॉन्ग, सुनिए और इन्जॉय कीजिए. Here we go.

सो हम लोग आ गए हैं वापस और आप लोग सुन रहे हैं पाकिनिया एक्सप्रेस. मैं हूं निम्रा आलम और आप लोगों को अगर मुझे किसी भी तरह का कांटेक्ट करना है या किसी भी तरह का फीडबैक भेजना है तो उसका तरीका बहुत आसान है. रेडियो फैब्रिक की वेबसाइट पर जाइए, वहाँ प्रोग्राम्स में पाकिनिया एक्सप्रेस को ढूँढिए. और मैं ना एक्चुअली सुरेंद्र कौर के गाने जो हैं वो बंद करने लगी थी और मुझे एकदम से एक और गाना नज़र आ गया, तो ये भी हम चलाएंगे क्योंकि वाई नॉट. या सो बात कर रहे थे हम लोग कि अगर आप लोग मुझे फीडबैक सेंड करना चाहते हैं तो उसका तरीका बहुत आसान है. आप लोग जाइए रेडियो फैब्रिक की वेबसाइट पे, वहाँ पे प्रोग्राम्स में बाकी नया एक्सप्रेस को ढूंढिए और जब आप नीचे आएंगे तो वहाँ पर आपके पास एक फीडबैक का कॉलम होगा जहाँ पर आप मुझे किसी भी तरह का मैसेज भेज सकते हैं, फीडबैक भेज सकते हैं. आप लोगों के फीडबैक का मुझे हमेशा से बहुत इंतज़ार रहता है. इट इज़ ऑलवेज फन. कभी कभार क्रिटिसिज्म भी आता है बट इट इज़ द पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट आई डू. इट्स ओके. आप लोगों की ख्वाहिशात और आप लोगों के कॉमेंट्स एंड फीडबैक्स आर ऑलवेज सर आंखों पर. इसके साथ साथ हम लोग क्या बात कर रहे थे, मैं पाकिस्तान आपको बता रही थी कि जब मैं ओला से वापस आ रही थी तो उसके बाद मैंने गाने जो हैं कौन कौन से चलाए और कैसा रहा. एक्चुअली जब आप गाने सुनते हैं तो वो एक वो होता है ना, आप लोग एकदम जागने लग जाते हैं और वो वाला मेरा फील था, तो इट वॉज़ ऑब्वियसली गुड. और वो वाली प्ले लिस्ट मैं चलाना चाह रही थी लेकिन मुझे फिर से सुरेंद्र कौर का एक और गाना पसंद आ गया, नज़र आ गया. आई होप दैट इट्स नॉट द सॉन्ग दैट आई जस्ट प्लेड, लेकिन या तो दिस सॉन्ग वी आर गोइंग टू प्ले. अच्छा, तो मौसम हो गया है भाई साहब बहुत ही डार्क और ग्लूमी होना जाएगा, मतलब जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे अक्टूबर के एंड तक. अभी हेअप्स शुरू हो चुका है. ऑटम में मोस्टली ऐसा ही होता है कि रातें आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता छोटी होती जाएंगी और दिन जो हैं वो लंबे दिन जो हैं वो छोटे होते जाएंगे और रातें लंबी होती जाएंगी. सॉरी दिन जो है वो छोटे होते जाएंगे और रातें आहिस्ता आहिस्ता लंबी होती जाएंगी. तो मतलब लंबी रातों का मतलब है कि जल्दी जो है बाहर डार्क होने लग जाएगा. सर्दी थोड़ी सी ऊपर नीचे है, मेरा भी सर्दी की वजह से ही मौसम जो तबीयत है वो थोड़ी ऊपर नीचे है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग अपना ख्याल रखें. होता नॉर्मली ये है कि जब सितंबर शुरू होता है तो हर एक को एक कोशिश होती है कि अब नए तरीके से बच्चों के स्कूल स्टार्ट होते हैं, नया टर्म स्टार्ट होता है, तो वो हर एक को होता है कि अच्छा अब एक नए जोश व बलबले के साथ काम पर जाना है. और इन सब चीज़ों में कभी कभी क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है तो एक तरफ आप बहुत ही इंथुजियास्टिक हैं बिकॉज़ आपको एक नया स्टार्ट लेना है आने वाले साल के लिए, और दूसरी तरफ क्योंकि मौसम चेंज हो रहा होता है तो उसकी वजह से बॉडी के ऊपर असरात आने शुरू हो जाते हैं और इन दोनों की वजह से एक डेडली कॉम्बिनेशन बनता है और हमारी तबीयतें ख़राब हो जाती हैं. तो एक वो ओवर स्टिमुलेटेड बंदा जो है जब उसको सर्दी में इस तरह से आप मौसम चेंज हो रहा है और आपको ख्याल नहीं रहता कि आप सही जैकेट लेकर गए हो या नहीं, तो उसी वक्त आपको लगती है हवा और आपके गले का हो जाता है काम तमाम. और वैसे भी अगर आप पूरी तरह से हर तरह का ख्याल रख भी रहे हैं तो आपके इर्द गिर्द किसी की तबीयत ख़राब होगी तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फेक्शंस हो सकते हैं. तो अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिए और कोशिश करिए कि जहाँ पर भी रहें खुश रहें, लोगों को खुश रहें अब रखें अपने पास, लेकिन अपने आप को कभी ना भूलें और अपने आप की और अपनी सेहत जो है उसको एज़ अ प्रायोरिटी नंबर वन रखें. इसके साथ साथ हालात हाजरा की तरफ आते हुए, पाकिस्तान में हमेशा की तरह सब कुछ उथल पुथल चल रहा होता है. मतलब अभी भी वो लॉन्ग मार्च वाला ड्रामा शुरू किया हुआ है. इमरान खान के साथ जो भी कंडीशंस चल रही हैं राइट नाउ वो सब वैसी की वैसी हैं, बल्कि वर्स्ट होती जा रही हैं. तो मतलब अगर आप मेरे से पूछें तो पाकिस्तान में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं होता और कोई कुछ भी नहीं है. जिसका जो दिल चाहता है, जिसका दिल चाहता है वो प्राइसेस जो है वो कभी ऑयल की बढ़ा देता है, कभी बिजली की बढ़ा देता है. सुई गैस पाकिस्तान में आती नहीं है. मतलब हर तरह से जो मुल्क है वो अजीब सी स्टेट में है, ना आगे जा रहे हैं और ना आगे चल रहे हैं और ना कोई चीज़ें जो हैं वो सहूलतें इंसानों को दी जा रही हैं. वहाँ पर बस वो अजीब स्टोन एज में वहाँ पर सारी दुनिया रह रही है और बस समहाउ सबर शुक्र जो है वो किया जा रहा है. इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है. तो वो एक वो जो होती है ना उम्मीद की किरण, वो एक्चुअली बहुत हद तक ख़त्म हो चुकी हुई है और मर चुकी हुई है लोगों के अंदर. अभी जब मैं पिछले दिनों पाकिस्तान में थी तो मैंने इस बारे में आप लोगों को बताया था, आई थिंक अपनी जर्नी के बारे में, अपने वहाँ पे एक्सपीरियंस के बारे में. लेकिन एक जो चीज़ जो है मुझे लगती है वो इट्स लाइक गैस जो है एक स्पेसिफिक पॉइंट पर आएगी और उसके बाद नहीं आएगी. तो मतलब सारी दुनिया जो है एक ही टाइम पर, वो आपको एक ऑर्डर वाली चीज़ है कि सारी दुनिया सुबह को उठो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अगर गैस आ रही है तो उतनी देर में बैठ के नाश्ता करो, 2:30 3 बजे जब आएगी तो उस टाइम पर फिर खाना
تو مطلب وہ ایک فکس ٹائمنگس ہیں جو گورنمنٹ نے آپ لوگوں کے لیے ڈیسائڈ کر لی ہیں کہ آپ نے آپ کا اگر ادھر ادھر ہٹ کے چائے پینے کو دل کر رہا ہے تو وہ نہیں ہو سکتا بیکاز گورنمنٹ ڈزن الاؤ دیٹ. تو مطلب اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ قید ہو گئے ہو, آپ مطلب انٹرنیٹ وہاں پر چل رہا نہیں ہے تیز. اسی طرح پھر حالات جو ہیں سعودی عرب کے خراب ہوتے جا رہے ہیں, گلف کے تو خراب تھے ہی تھے, تو وہ بھی ایک چیز ہے کہ بندہ اب دس دفعہ سوچتا ہے اللہ کے گھر جاتے ہوئے کہ آپ کا دل کرتا ہے آپ جانا چاہتے ہو بٹ آپ سم ہاؤ نہیں جا سکتے بیکاز آپ پلان نہیں کر سکتے بیکاز آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کنڈیشنز کیا ہوں گی. تو آئی جسٹ ریئلی ہوپ فش اینڈ پرے دیٹ سینیٹی پریویلز اور دنیا میں سب انسان جو ہیں وہ انسانوں کی طرح رہ سکیں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑنا لڑائی کرنا پاور کے دھن میں جو اندھے ہو چکے ہیں لوگ اللہ میاں ان لوگوں کو اور تھوڑی سی عقل دے اور اس کے علاوہ تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. پھر بھی آپٹمسٹک رہنا چاہیے, ہمیشہ اچھے کی ہی امید رکھنی چاہیے کیونکہ ہمارا دماغ جو ہے وہ چلتا اس طرح سے ہے. جب آپ اپنے دماغ کو کہیں گے کہ یہاں پر ایک گلاس نہیں ہے تو تھوڑی دیر بعد آپ کو فیل بھی نہیں ہوتا کہ گلاس آپ کے سامنے ٹیبل پہ پڑا ہوا ہے بیکاز آپ کا دماغ اس طرح سے چلتا ہے. اسی طرح سے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اپنے آپ کو یہ بتاتے رہیے کہ چاہے جتنی بھی ڈارک رات کیوں نہ ہو اس کے بعد صبح ضرور آتی ہے. تو ہمیشہ آپٹمسٹک رہیے اور کوشش کیجئے دیٹ چاہے بہت برے حالات ہیں لیکن اس کے باوجود اپنے آپ کو زبردستی سمجھائیے کہ نہیں سویرا ضرور ہوگا اور سویرا لکھا ہے ہماری قسمت میں اور ضرور ہوگا. تو ہیئر وی گو ود اندر سانگ آف سکھ سریندر کور, سنیے اور انجوائے کیجئے. ٹا ٹا ٹا ٹا ٹا.

आप लोग आ गए हैं वापस, और आज तो पूरा का पूरा शो हमने सुरेंद्र कौर पे चला दिया है भाई साहब। जब गाने अच्छे होते हैं तो फिर इसी तरह से होता है, फिर आपका दिल चाहता है कि आप ऐसा ऐसा, हालांकि मैंने सोचा कुछ और हुआ हुआ था जो मैंने आप लोगों को बताया भी कि मैं अपनी दूसरी प्लेलिस्ट चलाऊंगी, बट होता ही हमेशा ये है कि मैं कुछ ना कुछ चलाती हूँ और उसके बाद एकदम एक के बाद एक चीज़ जो है वो आने लग जाती है, और आपको लगता है कि यार यही रिश्तों थी, यही हमारी जो है मंजिल थी। तो आई एम वेरी हैप्पी दैट जिस भी मंजिल पर हम लोग साथ में चल रहे हैं और जहाँ हमें लेकर चल रहा है रास्ता, हम बस चलते चलते जा रहे हैं। एंड आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग दिस सॉन्ग्स, मैंने बिल्कुल भी प्लान नहीं किया हुआ था बट अच्छे चल रहे हैं। इसके अलावा इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था, क्रिकेट मैच जो एशियन गेम्स हो रहे हैं, एशियन गेम्स हो रहे हैं, उसमें इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस चल रहे थे वो भी मज़े का सब कुछ चल रहा था, इट वाज फन एंड एवरीथिंग। बारिशें बहुत ज़्यादा हो रही थी जापान में और इस वजह से चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा कैंसिल भी हो रही थी, बट उसके बाद जो है वो इंडिया पाकिस्तान का फाइनल हुआ और उसके बाद पाकिस्तान हार गया हमेशा की तरह। तो इट वॉज़ लाइक काइंड ऑफ या बमर या काइंड ऑफ लाइक ओके दिस इज़ समथिंग दैट हैपन्स एवरी टाइम, वाई बॉदर, मतलब आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड सीरियसली। मुझे पाकिस्तान की टीम में वैसे भी इतना कोई खास अब इंटरेस्ट रह नहीं गया, इंडिया की टीम इज़ गेटिंग एक्सेप्शनली गुड डे बाई डे। तो उनका भी एक वो होता है कि आपको अगर क्रिकेट देखने का शौक़ है और अगर आप क्रिकेट लवर हैं तो फिर ऑब्वियसली आप देखिए और इन्जॉय कीजिए, बट मुझे आई वॉज लाइक मैं सुबह सुबह 6:30 बजे उठ कर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल देखने के बिल्कुल भी मूड में नहीं थी, तो फिर मैंने ऑब्वियसली नहीं देखा। तो बट मेरे घर वालों ने देखा और वो सब लोग इन्जॉय कर रहे थे और दे वर हैप्पी दैट पाकिस्तान पुट अप अ फाइट, बट उसके बावजूद लाइक पुट अप फाइट करने से तो कुछ नहीं होता, यू ऑलवेज हैव टू लाइक स्ट्राइव फॉर मोर एंड ऑल दैट। लेकिन खैर इसके साथ साथ मैं आप लोगों के साथ बात कर रही थी कि जो है हेयर्स जो है उसका मौसम आने लग गया है और ऐसा ऐसा जो है वो डार्कर जब डेज होने लग जाते हैं तो थोड़ा ग्लूमी मौसम होने लग जाता है, और ग्लूमी मौसम होने की वजह से क्योंकि सब लोग सब चीज़ें आसपास जो हैं वो बहुत डार्क हो जाती हैं तो आपके दिल का जो मौसम है वो भी डार्क होने लग जाता है। और इट इज़ एक्चुअली प्रूवन फैक्ट कि जिस टाइम पर भी गर्मियाँ जिस टाइम डार्क होता है तो उस टाइम आप लोगों को डिप्रेशन लाइक सीजनल डिप्रेशन वाली चीज़ एक लोगों पे होती है, और जो लोग ऑब्वियसली ऑलरेडी पहले से थोड़े से डिप्रेस्ड होते हैं उन पर इस तरह के मौसम जो हैं वो और ज़्यादा असर करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जब भी आप लोगों को लगता है कि एक किरण सूरज की आप पे चमक रही है तो उससे छुपिए मत और उससे साइड पर मत होइए, पूरी की पूरी खिड़की खोलिए, पर्दे हटाइए, बाहर जाइए, मौसम इन्जॉय कीजिए। इट्स नॉट ईजी, आई डोंट नो, I know that it's not easy. कभी कभार बंदा लेटा होता है और उससे उठा नहीं जाता, कभी कभार आपसे हिला भी नहीं जाता, कभी कभार ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है कि बंदे का सांस लेना मुश्किल हो जाता है, लेकिन पता है एक टाइम तक आपके पास सहूलत है आपके पेरेंट्स की, आपकी माँ की, कि जो आपको उठाएगी, खिलाएगी, आपका ख्याल रखेगी, लेकिन एक टाइम के बाद ज़िंदगी जो है वो आपने ज़िंदगी का जो बोझ है वो आपने खुद ही उठाना है। तो ऑल दो ज़िंदगी बहुत मुश्किल है और बहुत लंबा सफ़र है और बहुत भारी सामान कंधे पर है, बट जैसे तैसे करते हुए खुद ही सफ़र काटना है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सकता है उसको एक्सेप्ट कीजिए कि जो सफ़र है वो आपने खुद ही काटना है और ये बोझ आपने खुद ही उठाना है, और चाहे और कोई नहीं आएगा आपको हेल्प करने के लिए, आया जाए तो खुदा का भेजा फरिश्ता है, आप लकी हैं, आपके लिए अल्लाह ने आसानी लिखी है, लेकिन 90% ऐसा ही होता है कि ज़िंदगी का बोझ खुद उठाना पड़ता है और अकेले उठाना पड़ता है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपका सांस लेने को भी दिल ना करे, बेड से निकलने को दिल ना करे, कोई काम करने को दिल ना करे, तो आप अपने आप को याद करवाइए दैट आप ख़ुद अपना सहारा हैं, आप खुद अपनी मोटिवेशन हैं, और अगर आप बेड से बाहर नहीं निकलोगे तो बेड से बाहर निकालने के लिए कोई नहीं आएगा। ये दिन जो ग्लूमी है उसको सनी और ब्राइट बनाने के लिए कोई नहीं आएगा,
ये दिन जो है ये आपको ख़ुद ब्राइट पहनना करना पड़ेगा। मेरे हमेशा से एक तरीका रहा है दैट मुझे जब भी बहुत ग्लूमी फील होता है तो मैं बहुत मेकअप करके अच्छे से कपड़े पहन के तैयार हो जाती हूँ, बिकॉज़ कोई नहीं आने वाला, कोई नहीं पूछेगा कि खाना क्यों नहीं खाया, कोई नहीं पूछेगा कि कंधों में दर्द है, कोई नहीं पूछेगा कि बोझ ज़्यादा तो नहीं हो गया। तो फ्रॉम वन हार्ट टू अनदर आई वुड जस्ट लाइक टू से यू दैट ऑल्दो सफ़र आसान नहीं है, लेकिन और सब को अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा, लेकिन इस सफ़र में आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप जब आसपास देखेंगे, अपने दाएं बाएं देखेंगे, तो उनको भी सिमिलर प्रॉब्लम्स हैं और सिमिलर रास्ते पर वो भी चल रहे होंगे। तो अगर आप किसी का सहारा नहीं बन सकते, कोई आपका सहारा नहीं बन रहा, तो आप किसी का सहारा बनने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि जर्नी जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाए, थोड़ी सी बर्दाश्त के काबिल हो सके। लेकिन ज़िंदगी के इस सफ़र में हम लोगों को ख़ुद अपना ख्याल रखना पड़ेगा। उठिए, बेड बनाइए, अपना आप खूबसूरत बनाइए, ब्राइट कलर्स पहनिए, छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस कीजिए, आसमान को देखिए और देखें कि वो कितना

0: हम लगा गए हैं वापस. कितना मज़े का सॉन्ग था भाई साहब. कभी कभी हमज़ा मलिक मेक सच गुड सॉन्ग्स. मुझे ऐसा लगता है कि बस आप वहीं पे रह गए हो, मतलब आप अपना आप कहीं उस गाने के अंदर भूल गए हो. मतलब म्यूज़िक मेक्स लाइफ वेरी इजी एंड म्यूज़िक मेक्स लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट एज़ वेल. हर इस अच्छी चीज़ की तरह म्यूज़िक का भी वही वाला सीन है कि जब अगर आप उसको अपने हाथ से निकलने देते हैं और उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा घिटमिट कर देते हैं तो फिर चीज़ें जो हैं वो बहुत हाथ से बाहर निकल जाती हैं. ज़िंदगी ऐसी ही है, हर अच्छी चीज़ हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती. तो गाने भी जब हम सुनते हैं तो क्योंकि गानों का बहुत इफ़ेक्ट होता है आपके दिल पर, आपकी मूड पर, तो क्या सुन रहे हैं उस पर बहुत मैटर करता है, उस पर बहुत असर रखता है, उसका बहुत असर होता है, गानों का बहुत असर होता है, ये कहना चाह रही थी मैं. आगे आप लोग मुझे बताइएगा आप लोगों का अल्फाज कैसा लगा. आज का जो सॉन्ग था, आज का जो शो का टॉपिक था वो था कि चटपटे गाने हम चलाएंगे. बट कभी मैं यही आपको कह रही थी कि कभी कभी इंसान सोच कर कुछ और आता है और एकदम चलते चलते कुछ और ही चीज़ बिल्कुल निकल आती है. लेकिन क्योंकि अब शो जो है वो ख़त्म होने की तरफ बढ़ रहा है और हम आपसे अलविदा लेना चाहते हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतना कहूँगी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर, साल के ख़त्म होने में 3 महीने रह गए हैं. हर वो चीज़ कीजिए जो आप इस साल करना चाहते थे और आपको लगा कि नहीं यार मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे नहीं करना है और ये वो, इस तरह की हर चीज़ें. मैं एक दफ़ा मैं छोटी जब थी तो मैं थिएटर में पार्ट लिया करती थी बिकॉज मुझे एक्टिंग, मतलब उस टाइम थिएटर करने का बहुत शौक था. एक्टिंग का नहीं लेकिन मुझे थिएटर करने का बहुत शौक था. मैं एक चुलबुली सी बबली सी बच्ची थी. थिएटर में आई वाज प्लेइंग, द शो वाज रेड राइडिंग हुड एंड आई वाज नॉट प्लेइंग रेड राइडिंग हुड. फॉर श्योर, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई वॉज प्लेइंग रेड राइडिंग हुड की ग्रैंडमा. ओके, अब ऑल्दो ग्रैंडमा सिर्फ स्टार्ट में आती है और आखिर में आती है और उसके बाद बिल्कुल भी नहीं होती है, बट द प्रॉब्लम इज़ कि शो स्टार्ट भी मेरे से हो रहा था और शो ख़त्म भी मेरे ऊपर हो रहा था. तो मैं जब छोटी थी तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं था कि जब वो, दैट वॉज माई फर्स्ट टाइम ऑन द स्टेज, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि कर्टन्स हटेंगे और सारी दुनिया आपके सामने बैठी होगी और आपको उनके सामने परफॉर्म, मतलब मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं था. और मुझे कभी कभी लगता है कि क्योंकि मैंने सोचा नहीं था इस बारे में बहुत ज़्यादा तो वो अच्छा था, क्योंकि जब वो कर्टन्स के पीछे मैं बैठी हुई थी ना तो मुझे, मेरे दिमाग में सिर्फ ये था कि अच्छा मेरी लाइंस क्या है, मेरे एक्सप्रेशंस क्या होने चाहिए, मैं कैसी लग रही हूँ, मुझे क्यूट लगना है और ये और वो सब कुछ. मैं बिल्कुल भी इस बारे में नहीं सोच रही थी कि कितनी सारी आँखें मुझे देख रही होंगी, कितने सारे लोग मुझे सुन रहे होंगे और कितने सारे लोग होंगे जिनकी मेरे बारे में बहुत तरह की डिफरेंट राय होगी. कुछ सोचेंगे मैं अच्छा कर रही हूँ, कुछ सोचेंगे मैं अच्छा नहीं कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी क्योंकि मुझे पता नहीं था कि लोग, पर्दे के पीछे लोग बैठे हुए हैं. तो मैं जब वहां पर वो एकदम पर्दा हटा और लोगों को मैंने देखा तो मैं एकदम लाल पटाख हो गई थी. तो वो रेड राइडिंग हुड का वो जो हुड है ना, वो मैं उसी रंग की हो गई थी. और उसके बाद मैंने लोगों को देखा और 2 मिनट के लिए मैंने पॉज किया और मैंने इधर उधर सबको देखा और मुझे लगा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, आप यहाँ से भाग नहीं सकते, आप कुछ कर नहीं सकते, आपको इन लोगों को फेस करना पड़ेगा. तो आई वॉज़ लाइक 1 2 3 और कूद पड़ो. ठीक है, तो मैंने एकदम फर अपने डायलॉग्स बोलना शुरू कर दिए बिकॉज डायलॉग्स तो मुझे याद थे, इतना तो था, इतनी तो मैं प्रिपेयर्ड थी. तो बात इतना पूरी कहानी सुनाने का जो असल वजह है वो ये है दैट जब भी लाइफ में ऐसी कंडीशंस आएँ जिसके बारे में बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उसमें बेस्ट ऑप्शन पता है क्या होता है? 1 2 3 और कूद पड़ो. सीरियसली, जस्ट लाइक जंप इन टू इट, जस्ट लाइक गो फॉर इट. जितना ज़्यादा सोचेंगे, कॉन्टम्पलेट करेंगे, जितना ज़्यादा सोचेंगे उतनी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती जाती हैं. तो आज का शो ख़त्म करते हुए मैं आपको सिर्फ ये कहूँगी कि जो ग्लूमी मौसम है, अगर आपको किसी तरह से इसमें स्ट्रेस आ रही है तो 1 2 3 और कूद पड़ो और अपने कामों को दिसंबर के एंड तक ख़त्म करें और अपनी ज़िंदगी को इंजॉय करें और अपनी ज़िंदगी की डोरें जो हैं वो अपने हाथ में पकड़िए. और अगर कहीं ना कहीं आपको कहीं थोड़ी बहुत ही मुश्किल हो जाती है तो जो सुरेंद्र कौर के हमने आज गाने चलाएंगे वो चलाइए, मज़े से इंजॉय कीजिए, कोई चटपटे गाने सुनाइए एक दूसरे के लिए, मज़े की चीज़ें प्ले कीजिए, एक दूसरे के साथ फ़न कीजिए और भूलिएगा नहीं दैट ज़िंदगी की डोर जो है, मतलब ये जो जिस जैसी ज़िंदगी आपकी चलेगी वो आप डिसाइड करेंगे, कोई और डिसाइड नहीं करेगा. आपका मूड कैसा होना चाहिए आज वो सिर्फ आप डिसाइड कर सकते हैं. कोई किसी में इतनी पावर नहीं है कि वो आपके मूड को इन्फ्लुएंस कर सके, और आपको वो पावर किसी और को देनी भी नहीं चाहिए. सो इसी नोट के साथ निम्र आलम इज साइनिंग ऑफ, और हम लोग मिलेंगे फिर से अक्टूबर के 3rd week में, और डेट होगी उस टाइम पर 20th October को. हम मिलेंगे एक दूसरे को दोबारा इसी तरह. आई होप कि मैं उस वक्त अपने चटपटे लिस्ट प्ले कर सकूं, बिकॉज आज सुरेंद्र कौर ने मुझे बिल्कुल डी ट्रैक कर दिया. इसी नोट के साथ कि हम जब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो हम इसी तरह का कोई चटपटा सा शो करेंगे, और आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और मेरे लिए भी दुआ करते रहें. तो जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँचे, आप सबको मेरा दुआ, सलाम और प्यार पहुँचे. अस्सलाम वालेकुम Salzburg, or here we go with another song. That is Mascara. Main wapas aaunga movie se. A.R. Rahman ka music hai, Imtiaz Ali ki movie hai. There was Diljit in it, there was Nasiruddin Shah in it. I just loved every bit of it. So here we go with the song, because song ke andar darmiyan mein aisi lines hain jo aapke dil ko chhu jati hain. To taiyar ho jaiye ek dil ko chhu jane wale song ke liye. और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी. अस्सलाम वालेकुम, जहाँ रहें खुश रहें. Here we go.
1: क्वीन विक्टोरिया के
0: डायलॉग्स भी.
2: विक्टोरिया की तरह कैसे दिख सकती हैं आप? आप तो वैसे ही लगेंगी. मलिका तिल फरेब.